ज्ञान दी जोत जगावन दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगन नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर नाल टकराउणा चंगा, उस खुदा दी रहमत अंदर मनुखता दे कम आउणा चंगा। हक सच लई अड़ना सिखो न अंदर वह के जरना चंगा, नाल अणख दे जीवन दे लई न इन किसे दी परना चंगा। रल मिल के रहना सबने दुख सुख बिच

है ये किस काम का, तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा है ये बस नाम का, आदमी तू अगर आदमी ना बना, तो ये जीवन भला है ये किस काम का।

खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंब दी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंब दी, एहसास करो।

ओ कहंदे ने दुख सह लियो सिदक ना हारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग

कली बैठी हमें लेके आसार, एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा, एक बारी मिले सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे, झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे, झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना, एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा, एक बारी मिल सजना काल दा निशाना मेरे सिरे उत्ते वजना, सिरे उत्ते वजना कड़े है जिड़ा उने एक दिन पजना, एक दिन पजना एक बार।

हर एक मंजर बिना बोले जो तू कहता उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं। लिखे हैं मन ने पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल चले।

बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने। ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से लदी।